मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आज दिन है सोमवार, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:55 और 55 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये पहली सभा।

सुबह की पावन बेला और चिड़ियों की चहक के साथ आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता है आकाशवाणी लखनऊ।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आइए रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर, जहां से अब से बस थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है।

0: WF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, खेती किसानी से जुड़ी जानकारियों के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। इसमें आज अमरूद की उन्नत बागवानी विषय पर हमारे किसान भाई सुने डॉक्टर कंचन कुमार श्रीवास्तव की भेंट वार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, अमरूद की व्यावसायिक बागवानी जहां आप करना चाहते हैं तो इसकी उन्नत तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रामानखेड़ा लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन डॉक्टर कंचन कुमार श्रीवास्तव साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अपने प्रदेश में अमरूद की उन्नत बागवानी की क्या कुछ संभावना है?
3: जी हाँ किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं अमरूद एक महत्वपूर्ण फल है। आम के बाद अमरूद की सर्वाधिक भारत में खेती की जाती है। अमरूद औषधीय गुण अधिक होने के कारण इसका ज्यादा उत्पादन होता है।
2: तो इसके लिए जलवायु और खेत का चुनाव कैसा हो?
3: अमरूद सामान्यतः उपोष्ण जलवायु में इसकी काश्तकारी की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं 0 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक, और इसके लिए जहाँ तक मिट्टी की है, बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त पाई जाती है। पौध लगाने का अच्छा समय है, इसमें किसान पौध रोपण कर सकते हैं।
2: जल निकास का अच्छा प्रबंध हो?
3: अमरूद एक ऐसा फल है जो महीना डेढ़ महीने अगर पानी वहाँ रुक जाता है तो उसको ये सहन कर लेता है।
2: तो लेआउट कैसे बनाएं इस समय?
3: सबसे बढ़िया समय होता है अमरूद लगाने का जुलाई से लेकर जब पहला मानसून आता है, अभी भी किसान भाई इसको लगा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम गड्ढे की खुदाई 2 महीने पहले से कम से कम कर देनी चाहिए, जिस समय सूर्य की रोशनी खूब रहती है, जिससे कि गड्ढे में जो किस तरह से कीटाणु है, किसी तरह से कोई रोगाणु है, वो खत्म हो जाते हैं
2: तापन के चलते।
3: हाँ, उस समय अप्रैल के महीने में हम लोग इनको कहते हैं, और उसके 1 महीने बाद वो गड्ढे को भराई कर दें, और उसके बाद पौधरोपण काम जुलाई से लेकर सितंबर तक किसान भाई सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
2: जहां लेआउट बन चुका है, गड्ढों की खुदाई और भराई हो चुकी है, वहां तो ठीक है, लेकिन जहां अभी नहीं कर पाए हैं किसान भाई, तो क्या अभी भी गुंजाइश है?
3: हाँ, अभी भी वो पौधरोपण का काम कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जिस समय मौसम साफ रहे और खेत में पानी ना हो, क्योंकि कीचड़ में अमरूद लगाया नहीं जा सकता है, तो जब बरकनी हो और अच्छी तरह से उसमें खुदाई हो सके तो कम से कम 1.5 से 2 फीट गहरा गड्ढा खोद करके और ऊपर की मिट्टी अलग करके और नीचे की मिट्टी अलग करके, तो ऊपर वाली मिट्टी में कम से कम 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद और कम से कम 0.5 किलो नीम की खली और बोन मिल यानी हड्डी का चूरा मिलाकर के उसको गड्ढे को भर दें, और उसके बाद जो है पौधरोपण का काम उसमें किसान भाई सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं?
3: आज प्रदेश में काफी पहली जो हमारी किस्में थी इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सुरखा और लखनऊ 49 जिसको सरदार के नाम से जाना जाता है, ये तो अच्छी किस्में हैं। लेकिन आजकल केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान ने कुछ नई किस्में इजाद की हैं, जिसको हम कहते हैं कि CISH ललित, श्वेता, लालिमा, धवल, ये चार किस्में अच्छी हैं। इसके अलावा और दूसरी किस्में भी जैसे कि ताइवान पिंक, ताइवान व्हाइट या VNR की कुछ किस्में भी जो है किसान भाई लगा रहे हैं,
2: लोकप्रिय हो रही हैं किसान के।

0: में।
1: क्योंकि इसका फल का साइज बड़ा होता है, इसलिए ये जो ताइवान की ज्यादा इसकी मार्केट में भी डिमांड होती है, किसान को अच्छा इसका पैसा मिल जाता है। और देखा गया है अमूनन कि बरसात में जो फल होते हैं ताइवान पिंक के, करीब 60 रुपए से लेकर के 120 रुपए किलो तक किसान को प्रति किलो के हिसाब से उसको दाम मिल जाता है। लेकिन जो दूसरी किस्में हैं, फल छोटे होने की वजह से उनको किसान को उतना उत्पादन नहीं मिलता। लेकिन इस किस्म के साथ एक समस्या ये आ रही है कि इसमें निमेटोड की समस्या, ताइवान पिंक के साथ निमेटोड समस्या आ रही है। तो जब किसान भाई पौध खरीदे तो देख ले उसमें किसी तरह का उसकी जड़ में कोई ग्रंथि ना हो, कोई नोड ना हो, अदरवाइज उनके बाग खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है।
0: डॉक्टर साहब, अमरूद की उन्नत बागवानी की बात चल रही है, तो अमरूद में क्या सघन और अति सघन बागवानी भी हो सकती है?
1: जी हाँ, अमरूद एक ऐसा फल है जो काट छांट के प्रति ज्यादा उत्तरदायी है। तो जो फल पौध काट छांट के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होते हैं, उनको कई तरह से उनकी हम सदाई कर सकते हैं, कई तरह से उनको हम उनको प्लांटेशन कर सकते हैं, उनको पौधरोपण कर सकते हैं। अति सघन और सघन दोनों इसमें कर सकते हैं, 1x1 मीटर या 1x2 मीटर या 2x2 मीटर, 2x3 मीटर, 3x3 मीटर पे किसान इसको सफलतापूर्वक लगा के अच्छा इसमें उत्पादन ले सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे अमरूद की उन्नत बागवानी के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: हाँ जी हाँ, किसान भाइयों आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 94-52-22-08-8 यानी 9452220988, 94-52-22-08-8 पे आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। और किसी तरह से प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो मेरे संस्थान में आकर के आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
0: डॉक्टर कंचन कुमार श्रीवास्तव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और अमरूद की उन्नत बागवानी कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अमरूद की उन्नत बागवानी विषय पर अभी हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी डॉक्टर कंचन कुमार श्रीवास्तव ने, और आपसे इस विषय पर भेंट की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। इसी के साथ कृषि चर्चा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब प्रस्तुत है आज का सुविचार नाग पंचमी।
3: नाग पंचमी, प्रत्येक मास की पंचमी तिथि सर्पों को समर्पित होती है, विशेष रूप से श्रावण शुक्ल पंचमी, क्योंकि वर्षा जल बिलों में भर जाने के कारण ये भूखे व्याकुल इधर उधर शरण लेते हैं। भयभीत मनुष्यों द्वारा या तो ये मार डाले जाते हैं या फिर स्वयं मनुष्यों और पशुओं को डसते हैं। सह अस्तित्व की भावना वाली भारतीय संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को उपयुक्त महत्व दिया जाता है। यह विषधर जीव भी पूजा जाता है और नाग देवता कहलाता है। यों तो नाग के अनेक अर्थ हैं, जैसे सर्प, हाथी, पर्वत, बादल आदि, लेकिन पंचमी नागों या सर्पों के लिए ही सुरक्षित है। नाग पूजा आदिकाल से प्रचलित है। मान्यता है कि नागपंचमी के दिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने शेष नाग को अपने प्रसाद से विभूषित किया था। नाग शिव जी के आभूषण हैं, तो विष्णु जी की शैया। श्रावण मास में समुद्र मंथन का आरंभ हुआ था, तब वासुकी नाग मंदराचल मथानी की रस्सी बने थे। मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ को दैत्यों से बचाने के लिए भी नाग उसे लेकर 12 वर्ष तक भागते रहे और अंत में प्रयाग में रखकर उसकी रक्षा की। आज भी प्रयाग में नाग वासुकी या बस्की नामक स्थान है। नवजात कृष्ण को कारागार से गोकुल तक शेषनाग की छत्रछाया में ही पहुंचाया गया था। लक्ष्मण और बलराम और वैयाकरण पतंजलि शेषावतार कहे जाते हैं। राम के पुत्र कुश की रानी कुमुदवती और अर्जुन की पत्नी उलूपी नाग कन्याएं थीं। वैदिक मान्यताओं के अनुसार दक्ष प्रजापति की कन्या कद्रु और कश्यप ऋषि की 1000 नाग संतानें थीं। इनमें से प्रमुख 9 नाग हैं, अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक और कालिय। कद्रु एकमात्र माता थीं जिसने अपने उन पुत्रों को भस्म

0: होने का शाप दिया जो मिथ्या आचरण करने को तैयार नहीं थे। जब शमीक शिष्य के शाप से तक्षक नाग द्वारा परीक्षित मारे गए तो उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ का संकल्प ले लिया। सभी दिशाओं से खींच कर आते हुए नाग यज्ञ कुंड में भस्म होने लगे और माता कद्रू का शाप फलीभूत होने लगा। लेकिन बुद्धिमान और सत्य प्रतिज्ञ वासुकी ने इसका उपाय कर रखा था। उनकी बहन जरत्कारु और इसी नाम के महर्षि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक को जन्मेजय की यज्ञशाला में भेजा गया। ऋषि पुत्र होने के कारण वे नाग यज्ञ रोकने में सफल हुए। उन्होंने नागों द्वारा किसी की अकारण हिंसा न करने का भी वचन दिया। आस्तिक और उनकी माता मनसा देवी के नाम से आज भी पूजित हैं। अग्नि पुराण में 81 नाग कुलों का उल्लेख है। नागों की उपस्थिति सर्वव्यापी है। यजुर्वेद में मंत्र है, ओम नमो अस्तु सर्पेभ्यो, ये के च पृथ्वी मनु, ये अंतरिक्षे ये देवी, तेभ्यो सर्पेभ्यो नमो नमः। अजंता की गुफाओं, तांत्रिक चित्रों, लोक कथाओं में नागों का चित्रण होता है। मलाबार में नागवन है। कश्मीर के अनंतनाग, शेषनाग, बेरी नाग और केरल का तिरुअनंतपुरम सभी नागों से संबद्ध हैं। जापान के राजवंश स्वयं को नागवंशी मानते हैं। यूनान और मिस्र की सभ्यताओं में नाग विद्यमान हैं। चीन में नाग मंदिर हैं। नॉर्वे, स्वीडन, अफ्रीका और अमेरिका के आदिवासी नाग पूजा करते हैं। भारत में मृत्यु संस्कार में 12वें दिन नाग बलि की जाती है, जिसमें नागों के निमित्त उपहार अर्पित किए जाते हैं। आस्तिक ने नागों का संहार रुकवाकर उनके द्वारा भी अकारण डसे न जाने का वचन दिया था। इसलिए कहीं भी सांपों का भय होने पर मंत्र पढ़ा जाता है, सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविषम, जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर। अर्थात हे विषधर सर्प, जन्मेजय के यज्ञ में आस्तिक के वचनों को याद करो और यहां से दूर सरक जाओ, तुम्हारा कल्याण हो।
1: नाग पंचमी, अभी आप सुन रहे थे आज का ये सुविचार। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। प्रस्तुत है आस्था प्रार्थना आत्मा व परमात्मा के प्रेम भाव से परिपूर्ण कार्यक्रम आराधना।

हे भोलेनाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आपका सबसे नाता है। ये ही जान हम सभी भक्त आपकी शरण में ये आस लिए आए हैं कि हमें अपने आशीर्वाद से सहनशीलता और शीतलता प्रदान करो, ताकि हम दूसरों के दुखों को समझें, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करें। हे प्रभु, अब तो हम भक्त आपकी कृपा की ही आस लगाए बैठे हैं।

सुबह की इस पावन बेला में जब सूरज की पहली किरण संसार के कण कण पर पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रभु ने मोतियां बिखेर दी हैं। और जिस प्रकार सूरज की रोशनी रात के अंधकार को गायब कर देती है, उसी प्रकार प्रभु श्री कृष्ण का नाम स्मरण करने से हमारे अंदर व्याप्त अंधकार रूपी कुरीतियां भी नष्ट हो जाती हैं।

हे प्रभु, इस संसार की सारी मोह और लालसाओं से हमारा मोह हटा दीजिए और हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि आपकी भक्ति में लीन हो जाएं। अब हम आपकी शरण में हैं प्रभु।

माता भवानी की ममता हम सभी भक्तों पर है। माता की ममता मई छाया में आकर हमारे सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। तो आइए जपते हैं माता भवानी का पावन नाम और दूर करते हैं अपने सारे कष्ट।

हम सभी पर ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे और हम सभी का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, इसी शुभेच्छा के साथ आज का ये भक्तिमय कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय प्रसंग। आज सुनिए भाग 265।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज का संगीतमय प्रसंग। स्वर थे पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र के साथ अनुराधा पौडवाल की, और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: विकास परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कृतम्। तेन कथितं यत् सर्वकारेण कृषकाणां कल्याणाय अनेकाः योजनाः प्रारब्धाः। सः अवदत् यत् चतुर्दशोत्तर द्विसहस्रतम वर्षात् षड्विंशत्युत्तर द्विसहस्रतमं वर्षं यावत् मोदी सर्वकारेण कृषकाणां कृते बृहत् योजनाः प्रवर्तिताः, न्यूनतम समर्थन मूल्यं च निरन्तरं वर्धितमिति। नवदिल्ल्याम् अद्य केन्द्रीय राज्यमन्त्रिणा डॉ जितेन्द्र सिंहेन 17 जनेभ्यः राष्ट्रिय अनुभव पुरस्कारः प्रदीयते। राष्ट्रनिर्माणे विशिष्ट योगदानं दत्तवद्भ्यः सेवानिवृत्त कर्मचारिभ्यः एतत् पदकम् अर्प्यते। एतदतिरिच्य पेंशन मित्र पुस्तिकायाः विमोचनं तथा 15 वित्तकोषाणां प्रदर्शनी अपि आयोज्यते। एयर इंडिया विमान सेवया विशाखापत्तनम नगरस्य सर्वाः वैमानिक यात्राः अद्य भोगापुरात् अल्लूरी सीताराम राजु अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनात् अनुवर्त्यन्ते। यासां विमान संकेतः VTZ इति पूर्ववत् एव स्थास्यति। संस्थया भोगापुर देहली मार्गयोः मध्ये प्रतिसप्ताहं 14 उड्डयनानां चक्रं निर्दिश्यते। अस्य आधुनिक विमानपत्तनस्य प्रायः 77,000 वर्ग मीटर परिमिते प्रांगणे 22 चेक इन स्थानकानि, 18 स्वचालित भार अर्पण यंत्राणि, 7 च उड्डयन सेतवः संयोजिताः सन्ति। राष्ट्रीय परीक्षण अभिकरणेन UGC नेट परीक्षायाः आंग्ल वाणिज्य समाजशास्त्र इति विषयत्रयस्य पुनः परीक्षा संचालनस्य घोषणा कृता। परीक्षायां सम्भूतानां अशुद्धीनां परिष्काराय सितंबर मासस्य 9 दिनांके आंग्ल वाणिज्ययोः तथा सितंबर मासस्य 10 दिनांके समाजशास्त्रस्य पुनः परीक्षा भविष्यति। विशुद्धानां निष्पक्षाञ्च परीक्षां विधातुम् एषः निर्णयः समिति अनुशंसया गृहीतः। भारतं श्वः नवदिल्ल्यां 12 ब्रिक्स ऋतुदशा मन्त्रिणां सम्मेलनम् आयोजयिष्यति। इतः प्राक् अद्य ऋतुदशा कार्यसमूहस्य जलवायु परिवर्तनस्य सुस्थिर विकासस्य विषये सम्पर्क समूहस्य च ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारिणां सभा भविष्यति। 26,000 भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षपदस्य विषयः स्थितिस्थापकतायाः नवान्वेषणस्य सहकारस्य सुस्थिरतायाः च निर्माणम् इत्यस्ति। भारतम् अद्यारभ्य अगस्तमासस्य 23 दिनांकं यावत् नवदिल्लीनगरे स्थिते इन्दिरागांधी स्टेडियम इति स्थाने BWF विश्व चैंपियनशिप स्पर्धाम् आयोजयिष्यति। 99,000 स्पर्धायाः अनन्तरमिदं द्वितीयवारं यदा भारतदेशः एतां स्पर्धाम् आयोजयति। FIH पुरुष हॉकी विश्व चषक स्पर्धा मालिकायां भारतीय पुरुष हॉकी दलम् अद्य स्वस्य विजय यात्रां निरन्तरं कर्तुं इंग्लैंड दलेन सह स्पर्धिष्यते इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, सुबह के 7 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में नीना सोनकर हमें बताने जा रही हैं पौष्टिक खसखस के बारे में। आइए सुनते हैं।
2: मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, हम जिस चीज की आज चर्चा करने जा रहे हैं वो भारतीय रसोई का एक अनमोल हिस्सा है और अपने औषधीय गुणों के लिए भी जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं खसखस की, जिसे आमतौर पर कई व्यंजनों में स्वाद और पौष्टिकता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटे छोटे बीज सिर्फ खाने में स्वाद ही नहीं बढ़ाते बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। खसखस को आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि ये शरीर को अंदर से पोषण देती है, मानसिक शांति प्रदान करती है और कई स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान भी करती है। खसखस का

0: सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि ये नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाती है। इसमें प्राकृतिक रूप से शांत करने वाले गुण होते हैं जो तनाव को कम करने और अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं। जो लोग अनिद्रा से परेशान रहते हैं उनके लिए खसखस किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। रात को गुनगुने दूध में अच्छी मात्रा में खसखस मिलाकर पीने से गहरी और सुकून भरी नींद आती है। इसके नियमित सेवन से मन शांत रहता है जिससे तनाव चिंता और मानसिक थकान दूर होती है। इसके अलावा खसखस हड्डियों के लिए भी बेहद लाभकारी होती है। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों की कमजोरी की समस्या होती है उनके लिए ये बेहद फायदेमंद हो सकती है। बच्चों बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये अत्यंत पोषक होती है क्योंकि ये हड्डियों की मजबूती और विकास में सहायता करती है। खसखस दिल के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी मानी जाती है। इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड और अन्य आवश्यक वसा होती है जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। ये रक्त संचार को सुचारू करती है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होती है। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इसे अपने आहार में संतुलित रूप से शामिल करना चाहिए जिससे उनका रक्तचाप नियमित रहे और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो। खसखस का एक और महत्वपूर्ण गुण ये है कि ये पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। जिन लोगों को कब्ज गैस या अपच की समस्या होती है उनके लिए ये बहुत लाभकारी हो सकती है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो आंतों की सफाई करता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। खासकर इसे भिगोकर या दूध के साथ लिया जाए तो ये पाचन को और अधिक प्रभावी तरीके से सुधारती है। ये त्वचा के लिए भी एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है। खसखस को पीसकर दूध या शहद के साथ मिलाकर लगाने से त्वचा कोमल और चमकदार बनती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तेल त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं और उसका रूखापन दूर करने में मदद भी करते हैं। जिन लोगों को स्किन एलर्जी या खुजली की समस्या होती है उनके लिए खसखस से बना फेस पैक या लेप बहुत प्रभावी हो सकता है। खसखस मधुमेह यानी डायबिटीज के मरीजों के लिए भी उपयोगी होती है। ये रक्त में ग्लूकोज के स्तर को संतुलित करने में सहायक होती है और शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाती है। जिन लोगों को ब्लड शुगर की समस्या रहती है वे इसे अपने आहार में डॉक्टर की सलाह पर शामिल कर सकते हैं लेकिन संतुलित मात्रा में। इसका सेवन करने के कई तरीके हैं। इसे दूध के साथ लिया जा सकता है, हलवे या खीर में मिलाया जा सकता है और कई प्रकार की सब्जियों और करी में इसका उपयोग किया जा सकता है। कई जगहों पर इसे पेस्ट बनाकर व्यंजनों में मिलाया जाता है जिससे स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। हालांकि खसखस के सेवन में संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। इसे अधिक मात्रा में लेने से सुस्ती या अधिक नींद आ सकती है, इसलिए इसे संयम से खाना चाहिए। जिन लोगों को कम रक्तचाप की समस्या होती है उन्हें भी इसे अधिक मात्रा में लेने से बचना चाहिए। श्रोताओं, खसखस एक साधारण बीज नहीं है बल्कि स्वास्थ्य और पोषण का भंडार है। ये तनाव को कम करता है, अच्छी नींद लाने में मदद करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, दिल की सेहत को सुधारता है, पाचन को बेहतर करता है और त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और इसके अद्भुत गुणों का लाभ उठाएं। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: पौष्टिक खसखस, इसके बारे में अभी हमें स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और श्रोताओं, अब आइए एक नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों पर। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा सुबह 10:10 का। जिले की हलचल आप सुन सकते हैं सुबह 9:15 से, जिसमें आज सुनिए संत कबीर नगर और हापुड़ जिलों की हलचल। सुबह 9:30

मिनट का वक्त रहेगा उर्दू प्रोग्राम का। आज की पेशकश होगी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कहानी मैं कौन हूँ, इसकी सीरीज शह और मात का पहला एपिसोड। आवाजें होंगी सुरेंद्र राजेश्वरी, मोहम्मद उमैर, आसिफ इकबाल, जमशेद सिद्दीकी और डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर की। साथ ही प्रेजेंटेशन होगी मोहम्मद उमैर और शाइस्ता जाहिद की। तहरीर और पेशकश होगी आसिफ इकबाल की। साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर अमृत लाल नागर, इस विषय पर विविधा प्रोग्राम में सुबह 7:10 से आपके साथ होंगी सीमा शाही। सुबह 7:31 से कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे दिनकर द्विवेदी का हारमोनियम वादन, राग होगा अहीर भैरव। लोकगीतों से सजे लोकरंग कार्यक्रम में आज की कलाकार होंगी डॉक्टर शिखा भदौरिया, जो आपके लिए प्रस्तुत करेंगी अवधि लोकगीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:50 पर, और साथ ही साथ इन्हीं के गाए लोकगीतों को आप सुन सकती हैं लोकमाधुरी कार्यक्रम के अंतर्गत दोपहर 2:45 पर। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित ये फोन इन प्रोग्राम आप सुन सकते हैं दिन में 11 बजे से। विज्ञान और किसान, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे केले की उन्नत बागवानी विषय पर डॉक्टर मोहम्मद सुहेल की भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। जवानों के लिए, फौजी भाइयों के लिए ये फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित पत्रों और ईमेल पर आधारित प्रोग्राम आप सुनेंगे दोपहर 1:50 से। महिलाओं के लिए घर आंगन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा आज दोपहर 1:15 से, जिसमें चर्चा होगी नाग पंचमी के सांस्कृतिक महत्व और पारिस्थितिकी तंत्र और हरियाली विषय पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर आप लुत्फ उठाएंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई गजलों का। शाम 7:31 से स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे थायराइड मूड स्विंग और चिड़चिड़ापान, इस विषय पर डॉक्टर सुभाष यादव से देवाशीष की भेंट वार्ता। हिंदी कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे डॉक्टर प्रत्यूष वत्सला का कविता पाठ। तो श्रोताओं, ये थी हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, सुबह के 7:10 हो चुके हैं, तो अब नमस्कार लखनऊ के इस खास सेगमेंट में पेश है विविधा।

नमस्कार। लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। तो श्रोताओं, आज हम हिंदी साहित्य की उस महान विभूति को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय समाज, संस्कृति, इतिहास और मानवीय जीवन के अनेक रंगों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। आज का हमारा विषय है साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर, अमृतलाल।

नागर। दोस्तों, अमृतलाल नागर हिंदी साहित्य के उन रचनाकारों में शामिल हैं जिन्होंने साहित्य को केवल कल्पना का माध्यम नहीं माना बल्कि उसे समाज और जीवन की वास्तविकताओं से जोड़कर देखा। उनकी रचनाओं में भारतीय समाज की विविधता, लोक जीवन की सहजता और इतिहास की गहराई, साथ ही मानवीय संवेदनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति दिखाई देती है। अमृतलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 को आगरा में हुआ था। उनका जीवन साहित्य के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और निरंतर सृजन से जुड़ा रहा। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण, व्यंग्य और अन्य साहित्य विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी भाषा में सहजता के साथ साथ लोक भाषाओं और बोलियों की समृद्ध छटा दिखाई देती है। दोस्तों, अमृतलाल नागर की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता उनका जीवन के करीब होना था। उन्होंने अपने पात्रों को किसी काल्पनिक दुनिया से नहीं जोड़ा बल्कि हमारे आसपास के समाज से ही लिया है। उनके साहित्य में सामान्य मनुष्य की खुशियाँ, परेशानियाँ, संघर्ष, कमजोरियाँ और मानवीय संवेदनाएं बहुत गहराई के साथ दिखाई देती थी। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में बूंद और समुद्र, नाचियो, मानस का हंस, खंजन नयन, अमृत और विष और शतरंज के मुहरे जैसी कृतियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बूंद और समुद्र में उन्होंने समाज और व्यक्ति के संबंधों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है और ये शीर्षक ही अपने आप में एक गहरा अर्थ रखता है। एक व्यक्ति भले ही समाज में छोटी सी बूंद जैसा दिखाई दे लेकिन अनेक व्यक्तियों से मिलकर ही समाज रूपी समुद्र का निर्माण होता है। वहीं मानस का हंस, इसमें उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और उनके समय को आधार बनाकर यानी इतिहास, संस्कृति और साहित्य का एक अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया। इस रचना में केवल एक महान कवि के जीवन की कथा ही नहीं है बल्कि उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की भी सजीव झलक मिलती है। अमृतलाल नागर का साहित्य भारतीय संस्कृति की गहरी समझ से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने इतिहास को केवल घटनाओं की श्रृंखला के रूप में नहीं देखा बल्कि उनके पीछे मौजूद मनुष्य और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास भी किया है। यही कारण है कि उनकी ऐतिहासिक और सामाजिक रचनाएं पाठकों को केवल जानकारी नहीं देती बल्कि उस समय और समाज को महसूस करने का अवसर भी प्रदान करती है। दोस्तों, अमृतलाल नागर की भाषा भी उनके साहित्य के एक बड़ी शक्ति हुआ करती है। उन्होंने हिंदी को केवल किताबी भाषा के रूप में नहीं बल्कि आम जनजीवन की भाषा के रूप में अपनाया। उनके लेखन में लोक भाषा, मुहावरे, कहावतें और बोलचाल की सहजता दिखाई देती है। यही कारण है कि उनके पात्र और संवाद पाठकों को अपने आसपास के लोगों जैसे लगते हैं। साहित्यकार अपने समय का साक्षी भी होता है और समाज का संवेदनशील प्रहरी भी माना जाता है। अमृतलाल नागर ने अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक विसंगतियों, मानवीय संघर्षों और बदलते जीवन मूल्यों को सामने रखा। उनकी रचनाएं हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करती हैं कि समाज कितना भी बदल जाए, मनुष्य की मूल संवेदनाएं, प्रेम, करुणा, संघर्ष, सम्मान और आत्मीयता हमेशा महत्वपूर्ण ही रहेगी। अमृतलाल नागर का साहित्य हमें अपनी जड़ों से जोड़ने की प्रेरणा भी देता है। उनके लेखन में भारतीय लोक जीवन और संस्कृति के प्रति गहरा लगाव दिखाई देता है। उन्होंने इतिहास और परंपरा को वर्तमान से जोड़ते हुए ये दिखाया कि किसी समाज को समझने के लिए उसकी भाषा, लोक कथाओं, रीति रिवाजों और सामान्य लोगों के जीवन को समझना भी उतना ही आवश्यक है। आज जब साहित्य पढ़ने की आदत डिजिटल माध्यमों और तेजी से बदलती जीवन शैली के बीच कहीं पीछे छूटती जा रही है, ऐसे समय में अमृतलाल नागर जैसे साहित्यकारों की रचनाएं हमें ठहर कर जीवन को देखने और समझने का अवसर देती हैं। उनका साहित्य हमें बताता है कि किताबें केवल ज्ञान का भंडार नहीं होती
बल्कि मनुष्य

और समाज को समझने की खिड़की भी होती है। एक महान साहित्यकार की पहचान केवल उसकी प्रसिद्ध रचनाओं से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि उसकी रचनाएं समय बीत जाने के बाद भी पाठकों को सोचने पर मजबूर करती रहीं। अमृतलाल नागर की साहित्यिक विरासत इसी दृष्टि से आज भी महत्वपूर्ण है। अमृतलाल नागर ने अपने लेखन से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है और साथ ही पाठकों को भारतीय समाज और संस्कृति को नए दृष्टिकोण से देखने की दृष्टि भी दी है। उनका साहित्य हमें ये संदेश देता है कि साहित्य का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य के और करीब लाना है। तो श्रोताओं, अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि शब्द जब संवेदना से जुड़ते हैं तो साहित्य जन्म लेता है, और जब साहित्य समाज से जुड़ता है तो वो इतिहास बन जाता है। आइए अमृतलाल नागर की साहित्यिक विरासत को याद करते हुए हम भी पुस्तकों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपनी भाषा और संस्कृति का सम्मान करें और साहित्य के माध्यम से समाज को समझने का प्रयास करें। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ आज के विविधा कार्यक्रम से सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रही थी नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम विविधा। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। श्रद्धा और हर्षोल्लास के वातावरण में पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा नागपंचमी का त्योहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शुभकामना संदेश में प्रदेशवासियों की सुख शांति और खुशहाली की कामना की। सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ। मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का किया आह्वान। और राज्य में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर।

0: वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर लगी रोक। अब समाचार विस्तार से। नागपंचमी का पर्व आज पूरे प्रदेश में पारंपरिक तरीके से श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने भगवान शिव से कामना की है कि प्रत्येक घर आंगन आनंद शांति और खुशहाली से आलोकित रहे। उन्होंने नागपंचमी को प्रकृति के प्रति श्रद्धा सह अस्तित्व और शिवत्व का संदेश देने वाला पावन पर्व बताया है। सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पर्व के कारण प्रदेश भर के शिव मंदिरों में आज तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर जय घोष करते हुए भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव भक्त श्रद्धालु अपने घरों में आज भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस बीच वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कल से ही श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ पहुंची है।
1: सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के पावन पर्व से पूर्व श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। दूर दराज के जिलों और राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा करते नजर आए। सावन सोमवार को शिव पूजन जबकि नागपंचमी पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी धार्मिक संयोग को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: प्रदेश भर में श्रद्धालु और कांवड़ियों की सुविधा एवं सुरक्षा को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संभल, एटा और बिजनौर सहित कई अन्य जिलों में कांवड़ यात्रा को देखते हुए 12वीं तक के सभी विद्यालयों में आज के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं पीलीभीत जिले में सावन के सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कक्षा 8वीं तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पूरे राष्ट्र ने कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भावना के साथ निरंतर कार्य करते रहे।
2: भारतीय राजनीति के वे अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ निरंतर कार्य करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें 1957 में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर संसदीय सीट से देश की संसद के लिए चुने जाने का अवसर प्राप्त हुआ और जिन्होंने 5 बार लखनऊ संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की संसद में नेता विरोधी दल के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में अपने सुशी शासन का लोहा मनवाया हो।
0: स्वर्गीय वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ के केजीएमयू साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में अटल स्मृति संध्या का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार अशोक चक्रधर ने काव्य पाठ किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की महान क्रांतिकारी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी स्मृतियों को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अवंतीबाई का आदर्श लोगों के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए बदायूं में वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम पर पीएससी की नई वाहिनी का गठन किया गया है।
3: उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का ये आदर्श उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पीएसी बल में जब 3 नई महिला बटालियन के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, इन 3 पीएसी महिला बटालियन का नामकरण और उनके गठन के पीछे का जो भेद था उसके पीछे भी उद्देश्य स्पष्ट था।
0: सिद्धार्थनगर जिले में सांसद जगदम्बिका पाल ने वीरांगना अवंतीबाई की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को उनके द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए कार्यों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_

0: जीकेपी पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल वर्चुअल माध्यम से भारत में मधुमेह के अध्ययन के लिए अनुसंधान सोसाइटी के डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मधुमेह जागरूकता वीडियो लाइब्रेरी विश्वास का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सिंह ने मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण भारत में मधुमेह की बढ़ती बीमारी से बचाव के लिए समुदाय, तकनीकी और आंकड़ों पर आधारित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन विभाग ने दूध और दुग्ध उत्पादों जैसे खोआ, पनीर, घी आदि में स्वास्थ्य के लिए घातक हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल पर प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं।
1: आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश के अनुसार किसी डेयरी या डेयरी उत्पाद की विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण इकाई में हानिकारक रसायन अथवा अपमिश्रक पाए जाने पर संबंधित निर्माण इकाई को तत्काल बंद करने तथा समस्त दुग्ध उत्पादों को जब्त करने के साथ साथ बीएनएस की सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज होगी। इसके अतिरिक्त मिलावटी ब्रांड्स की बिक्री पर प्रदेश व्यापी रोक लगाकर प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस तत्काल रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दूध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्माण और विक्रय उनकी मूल प्रकृति एवं निर्धारित खाद्य मानकों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार कल तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी कल ही है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए UP T20 लीग सीजन 4 के मुकाबले में काशी रुद्रास की टीम ने कानपुर सुपरस्टार्स की टीम को 8 विकेट से हरा दिया। हमारे लखनऊ प्रतिनिधि ने बताया कि पहले बल्लेबाजी करते हुए कानपुर सुपरस्टार्स ने 163 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाबी बल्लेबाजी में काशी रुद्रास की टीम ने 18.1 ओवरों में 2 विकेट पर 167 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाराबंकी में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। वहीं वाराणसी में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है। सभी नाविकों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। इस बीच चित्रकूट जिले में रामघाट पर मंदाकिनी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने राज्य में कहीं कहीं बिजली गिरने की आशंका के प्रति भी लोगों को सतर्क किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रद्धा और हर्षोल्लास के वातावरण में पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा नागपंचमी का त्योहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शुभकामना संदेश में प्रदेशवासियों की सुख शांति और खुशहाली की कामना की। सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किया डायबिटीज रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ। मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का किया आह्वान। और राज्य में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका संचालन पर लगी रोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को समझना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

Blues. मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसमें आइए सुनते हैं दिनकर द्विवेदी का हारमोनियम वादन। राग है अहीर भैरव। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना तीन ताल में। आइए सुनते हैं।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे दिनकर द्विवेदी का हारमोनियम वादन, राग था अहीर भैरव। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 8 बजने को है, अब से बस थोड़ी देर में रिले किया जाएगा समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार।

0: विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14

0: 3D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
1: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 011-23-31-04-81 या 23-71-17-17 या 23-71-71-06 और 23-31-44-44। व्हाट्सएप नंबर 9289-0940-44 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उड़ीसा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
3: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
4: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा।

0: डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में पांचवी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और यूजीसी नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की सीएजी की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जाँच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में जेईई नीट सीयूईटी के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपने ट्यून किया 100.4 एफएम पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र, जहां पे आपको मिलता है गीत संगीत और ज्ञान का बम्पर एंटरटेनमेंट। लीजिए प्रस्तुत है हमारा मॉर्निंग शो नमस्ते बरेली। आज के नमस्ते बरेली के सुरीले और कर्णप्रिय सफर को लेकर हाजिर है आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत, साथ में होगा आपका ज्ञानवर्धक सफर। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को श्रावण मास के तीसरे सोमवार और नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके साथ होंगे श्री नारायण धाम नवदुर्गा मंदिर आरपीएफ कॉलोनी मालगोदाम रोड बरेली के पुजारी पंडित हरिपाल शास्त्री जी। पंडित जी नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार भैया।
0: तो पंडित जी, आज सावन का तीसरा सोमवार है और नागपंचमी का त्यौहार है, तो इस विषय में आप हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दीजिए।
1: सावन का सोमवार बहुत ही लाभकारी और पुण्यकारी होता है, साथ में नागपंचमी के पर्व। जिन व्यक्तियों को कालसर भी हो गए, उन व्यक्तियों को भगवान भोलेनाथ का अभिषेक और नाग देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए।
0: जिनको कालसर्प का
1: जी
0: होता है,
1: उनको अवश्य ही पूजा करनी चाहिए, साथ ही उनको काले व्रत की भेंट देनी चाहिए नाग देवता को, साथ ही नाग देवता को दूध और काले व्रत की बलि देकर और नागनायन का जोड़ा

0: भगवान शिव के लिंग के पास रख के उनको प्रभावित करना चाहिए, जिन व्यक्तियों को काल सर्प दोष है।
1: तो इसकी पूजा पद्धति क्या होती है? मतलब
0: भगवान शिव का अभिषेक सबसे उत्तम पूजा है।